तीर्थ उनों युगों का धर्म है, कल में कीर्तन हर नाम। कल युग दे विच नाम नू विशेषता मिली है, वड्याई मिली है। कोई बनारस दी पवित्र धरती ते तप कर लवे, पुन दान कर लवे, जल धारे कर लवे, गऊआं दा घोड़ियां दा हाथियां दा दान कर लवे, गुपत अशरफियां गुपत दान कर लवे। आख्या ए जितने भी कर्म कांड हन ए पिछलियां युगां दी बात है। तू आप दे बराबर सोना भी दान करे ना रोज, तावी तेरे नित नेम दे तुल नहीं। अमृत वेले जाग के इशनान करके नित नेम करना, उदे तुल होर कोई वस्तु नहीं हो सकती। इसका कितना कु फल है कोई रसना बयान नहीं कर सकती। पर असी क्यों बेखबर हां इस गल तो, क्योंकि सानू नजर नहीं आउंदा। असी कहंदे आ यही चार घंटे धंधिया विच लावांगे, चार पैसे नजर आउणगे, पर नजर नहीं आउंदा सानू कि इस आत्मा दे लई भी असी कुछ करना है, इनू भी कोई खुराक देनी है। नजर नहीं आउंदा सानू परमेश्वर ने की करन लई भेजया है, ते असी की कर रहे हां, किधर जाना सी, किथे पहुंच गए हां। जो गुरमुख जन हन भाई, वह तो हर थां तो कोई ना कोई वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन, हर थां तो कोई चंगी वस्तु ग्रहण कर लेंदे हन। भाई लहना जी संगतां नाल हन जा रही हां, मगर मालन वेच रही है पालक, आवाज दे रही है पलक सोए चुके, पलक सोए चुके। ते भाई लैणा जी खड़े हो गए, सेवादार कहंदे ने महाराज पालक वेच रही है, चलिए। कहन लगे नहीं, ये ज्ञान दे रही है, कोई समझा रही है सन के जेड़े अमृत वेले पलक मात्र भी सौ गए, वो अपने निशाने तू अपनी राह तू चुक गए, वो भूल गए रस्ता। इसलिए आज रुत बीजने दी यही एक रुत है जो मनुष्या जन्म विच असी जप सकते हां। सानू शुभ संदेश मिलता है इन्हां अखर

ना पूछो जाति। ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना, जोत पुछन करके निकटता आउंदी है, जात पुछन करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आप दी चोली पावां।

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

जो हरी जस विच हरी दी कथा वार्ता विच वाहिगुरु दी याद विच गुजरदा है ओही लाभदायक है। ओही तेरे अंग संग होके तेरी सहायता करेगा। बाकी दा समा लेखे विच नहीं, क्योंकि गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम। जिस तरह किरपन मनुख सारी उम्र धन जोड़ जोड़ के मर जांदा है, उसका सुख नहीं मान सकता। इसे तरह ही अमोलक श्वासा रूपी धन जो मनुख नू मिलिया, जे भाई जपया नहीं, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं कीती, हजूर कहिंदे ने गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, तेरा संसार ते आया निष्फल हो जाएगा। इसलिए जितना भी समय सिमरन विच जप तप विच बतीत हुंदा है, समा ओ सफल है

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे कोलों डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बता।

धरती दी पालना करन वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय दी सेवा करदे ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय दी भगत लोग सेवा करदे ने भगती करदे ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल दी सेवा करके ते भगत भगती

सराय चा बड़ा वड़ा शायमयाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लुआना है।

लक्ष्मी कुवारी उस परमेश्वर दे घर लक्ष्मी कुवारी है। ओदे हुक्म तो बगैर कोई लै नहीं सकदा, जे कोई लै भी लवेगा ते दुखी होवेगा।

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदी किसे नु मार दें दिए, कदी किसे नु मार दें दिए। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार खेड कर दिए। एहो जिया

बन लिया। ते बादशाह कह लगा देखो तेरा हर बीठल है नामदेव, दस मेनू तेरा बीठल, तेरा भगवान किथे।

सात घड़िया का समा दिता, अगर सात घड़िया विच ए मरी हुई गां जिंदा ना हुई ते नामदेव नूं हाथी दे पैरां थले लताड़ दिता जावे। नामदेव नूं कैद कर ले, नामदेव दे नाल प्यार करन वाले मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह दे कोल गए ते बादशाह नूं ए बेनती की।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान करते हैं।

हाथ जोड़े भगत नामदेव दे चरणा ते मत्था टेकिया आखिया ऐ नामदेव बख्शी हिंदू मैं तेरी गाए मैनू अपनी गां समझ के माफ कर दे। तो नामदेव जी ने बादशाह नूं उस वक्त

खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारिया नु दिती। बादशाह ने दरबारिया नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने, दरबारियां ने अपनी कीमती सेजा नामदेव दे अगे धरी ते बेनती कीती, बादशाह बादशाह सलामत दी ए इच्छा है, ए कीमती सेजा तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती सेजा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए। बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा दरबारियां दे नाल। फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसल्ली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दिया लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दिया लहरां वाल तकन लग पे।

भक्त नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान, ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती। अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर।

अमृत बाणी बोली मिठी हो जाती है। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैसो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नूं

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कहंदे ने मंदिर तां ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं। जदों पंडतां ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता। तो भगत जी कहंदे ने अगर वो दयाल हो जाए

अवर नहीं जाए, नाम देओ गुरु की शरण आए। ए नाम देव ऐसे गुरु की शरण विच रहिंदा है, जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर

उस परमेश्वर दे घर की है। भगत जी ने बयान किया है, जांचे कर निकटवर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अमरीक नारद नेजे सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला एते जी जांचे हैं करी सर्व व्यापक अंतर अरी प्रणवे नाम दियो तांची आन सगल भगत जांचे निशान। ए बादशाह ओ परमेश्वर इतना ब्यांत है ए जो मैं दसे है ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है ओ बनान वाला है। प्रणवे नाम दियो तांची आन नामदेव आखद है ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

कछ पाहन में परमेश्वर नाही व्यापक है सब ही कभी कछ पाहन में परमेश्वर नाही जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है जमीन जमान के बिखे समस्त एक जोत है न काट है न बड है न काट बड होता है न हन है न बन है समान रूप

पली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले, कहूं फूल होए के भली राज पूले, कहूं भवर होए के भली पात, कहूं असम होए के बह बेग ऐसे कथो मैं न आऊं कथो तो है कैसे, कहूं मैं आऊं कथो तो है कैसे कथो मोर।

दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला का दूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्भ जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगावी क्यों पुर्ज पहा मोहन ठगावी

विरला जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप में गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है, प्रभु वाली

प्रभु की जरा गल सुना दे, संसार के विकारां दे बंधना तो जरा बचावे। है कोई ऐसा सज्जन मित्र, है कोई ऐसो हमरा मीत, सकल समग्री जियो हियो दियो अर्पो अपनो जीत, ओदे नाल पक्की सांझ पा। श्लोक वारा ते वरीक पढ़ने, साहिबा ने कहा जे तू

गले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्व गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आ गए सुख पावे। तनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे। बौ लस्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरधारे। अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक।